よく腰ですこいこらくねパッタだねペチョペチョアネクファール腰

れない。歩くしかない。ヘーパさん、ディスコパさん。

aku simpan tinggi. Pakai kijabi koi pato kai toku sikai.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

Ah!

Moctita Mechan.

So

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

रिजल्ट में।

Sip.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: कुछ

awesome.

kesadaran bersyarat kita nusan kerdin.

0: चल कि समय अचल रहने का पुरुषार्थ तीव्र पुरुषार्थ ही कर सकता। साधारण पुरुषार्थ ही एवर रेडी बनने में समय लगा देना। और बाप दादा ने कहा है कि सेकंड में बिंदी अर्थात फुल स्टॉप। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं होगा तो क्या होता है? फुल स्टॉप के बजाय क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। बिंदी कितना सहज है और फुल स्टॉप कितना टेढ़ा बांका है। फुल स्टॉप तो फुल स्टॉप हो जाए, कामा की मात्रा भी नहीं हो, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं हो। क्या करूं ये सोचने का भी समय नहीं मिले। कोई भी बच्चा सोच नहीं सकता।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

siamo grigi. Body.

Yes.

musique, dear.

0: जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी
1: पाप है।

Mr.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ऐसे

ऐसे सबसे

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Baby.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है, पता है कौन सी आश है? वो जान तो गई हो, जान गए हो ना टीचर्स, जान गए हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो, बाप दादा पुरुषार्थ देख करके खुश कराते हैं। लेकिन एक आश ये के पुरुषार्थ में अभी दीवार गति चाहिए, शरत है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। कारण तो समय अनुसार बनते ही है और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप

0: Oh shit. चेक करना है। टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। भाई मधुबन वाले है ना, करना है ना, ये हाँ नहीं करता, करना है। आज समस्या को समाप्त, शब्द को ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म हो के निवारण आ जाए। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे के कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो, सहन करना पड़े, सामना करना पड़े माया को। एक तो के समान संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्ची लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। लेकिन कई समय पर कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती, लेकिन अंदर समझती है कि कहां कहां तो झूठ नहीं कहते उसको, लेकिन कहते हैं, समझती है कि चतुराई से चलना पड़ता है। तो चतुराई क्या है ये तो करना ही पड़ता है। तो वो स्पष्ट बोलती है और ब्राह्मण रायल भाषा में कहती है, मेरा भाव नहीं था, न भावना थी न भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा नीचे आवे तो पता पड़े क्या है। लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप पड़ती है, लेकिन वो हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा की विजय। सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वो सहन नहीं है, लेकिन बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा होते। ऐसे समझेंगे हम बहुत अच्छे जाते, हम कुछ चलने की चतुराई आ गई, लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा। इसलिए चतुराई से नहीं चलो, एक तो को देख करके भीखा भी करती है, ये ऐसे चलती है ना, तो उसका नाम बहुत अच्छा हो गया, ये बहुत हावी हो गई है। और हम सच्चे चलते हैं ना तो हम पीछे के पीछे रहेंगे, लेकिन रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है। पाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे, चाहे पीछे दिखाई भी Mm-hmm. के लिए काफी नहीं करूं। यहां नाम नहीं है लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है।

Písame más.

atmak.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा, पार्थक्यता वर्ष के पहले इस वर्ष को संकल्प चला। era tu ex. कितने समृद्ध रहे, कितने साधारण रहे, अब ऐसे एवर रेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो पीते वो वाव वाव वाई नहीं हो वाव अभी कोई समय वाव वाव होता है, कोई समय वाह की बजाय वाई हो जाता है। कोई समय बिंदी लगाती है, कोई समय क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। आप सबका मन भी कहे वाह, और जिसके भी समान संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Ciao.

Chador. Fellow. जवाब की प्रकृति सूर्य की शक्ति सूर्य की किरणाएं सता भी है, पानी सुखाता भी, दिन से रात, रात से दिन, करके दिखाता फैला सा।

Szarobka.

se apa? Apa Master Kian Sudir? Pocok Tuala? Sudir?

0: ऐसे जाओ जब तक जाओ तब तक मन को एकाग्र कर सको।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने एक बारी सभी सेंटर्स का चक्कर लगाया, पता है क्या देखा? कमी किस बात की है तो यही दिखाई दिया कि एक सेकंड में परिवर्तन कर फुल स्टॉप लगाना इसकी कमी है। जब तक फुल स्टॉप लगाओ तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाता। बाप दादा ने सुनाया कि एक लास्ट टाइम की लास्ट एक घड़ी होगी जिसमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। लेकिन देखा क्या, लगाना फुल स्टॉप है लेकिन लग जाता है कमा। दूसरों की बातें याद करते ये क्यों होता, ये क्या होता, इसमें आश्चर्य की मात्रा लगा जाती तो फुल स्टॉप नहीं लगता लेकिन कमा आश्चर्य की निशानी। और क्यों क्वेश्चन कि क्यों लग जाती, तो इसको चेक करना। अगर फुल स्टॉप लगाने की आदत नहीं होगी इसलिए बाप दादा होमवर्क दे रहे हैं कि खास

0: full stop. Sikar mein lagane ka. Baar baar abhyas karo. Abhi fast divar pusharat karo. Abhi chila dala pusharat. सफलता नहीं दिला सकते।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: संतुष्ट।

ます。

चाबी है
समय आगे पीछे नहीं, सेवा करने के समय निमित्त भाव, निर्माण भाव, इस विधि से सेवा करने वाले का जमा का खाता कैसे बढ़ता जाता।

जमा खाता जमा हो जाता है, जैसे टिक टिक टिक टिक जोर से जल्दी जल्दी करो, ऐसे मशीन चलती है। तो जगह तम्बा बड़ी खुश हो रही थी, जमा खाता

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था, शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वो तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो शरीर स्थूल शरीरधारी, इतने बड़े संगठन में रहने वाले, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले, संस्कार को मिलाना अर्थात फरिश्तापन। अगर संस्कार को देख कहीं बच्चे दिल शिकस्त भी हो जाते, बाबा बहुत अच्छा, ब्रह्मा बाप बहुत अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा, प्राप्तियां बहुत अच्छी, लेकिन संस्कार स्वभाव मिलाना अर्थात सर्व के प्यारे बनना। कोई कोई के प्यारे नहीं, क्यों? कई बच्चे कहते हैं कि कोई कोई से प्यार विशेषता को देख के भी हो जाता है। इनका भाषण बहुत अच्छा, इसमें फलानी विशेषता बहुत अच्छी, वाणी बहुत अच्छी। ये फरिश्ता बनने में ये फिकर आता है, प्यारा भले बनाओ लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूं, न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ, विशेषता से प्यारा नहीं। ये इसका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, वो धारण भले करो लेकिन इसके कारण न्यारा बन के सिर्फ प्यारा बनना बोल रहा हूँ। सर्व का प्यार हर एक के मेरा अपनापन।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: फिर आप

样啊。Ani to titi na to atat pelajari yang aneh.

是鬼不凶骨，加诺哥阿德特达隆布尼卡米阿尼基弗登我给马哈

onde? Na Terra. Na Terra.

कुछ ना लेकिन कुछ मीठा भी खिला देते हैं। और फिर क्या होते हो, फिर तंग होते हो ना, तो फिर कहते हैं अभी बाबा अभी बाबा आने आप देते हैं। और भगाए बाबा क्यों, आने क्यों देते हैं? क्या है, क्यों बार बार माया आती है? हर समय हर कर्म करते त्रिकाल दर्शी के सीट पर सीट नहीं होते। अगर और फ्यूचर को जानने वाले तो क्यों क्या नहीं करना पड़ेगा? त्रिकालदर्शी होने के कारण पहले से ही जान लेंगे कि ये बातें तो स्वयं द्वारा जाए औरों द्वारा जाए माया द्वारा जाए प्रकृति द्वारा सब प्रकार से इसका साधन है। सुनाया एक तो आत्महत्या अंत तीनों काल चेक के समझ के फिर कुछ भी कर्म करो, सिर्फ वर्तमान नहीं देखो, सिर्फ वर्तमान देखते हो तो कभी परिस्थिति ऊंची हो जाती है और कभी स्वास्थ्य हो जाए। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो फिर करो, नहीं तो जो सोच के नहीं करते तो सोचना पश्चाताप कर हो जाता। ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो पीछे सोचना अर्थात पश्चाताप का रूप बदल जाता और पहले सो

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन है। जैसे साइंस से आपकी रूहानी शुभ भावना शुभ कामना की वृद्धि दृष्टि और सृष्टि को बदल जैसे मधुबन में अनुभव किए ब्रह्मा बाप के कर्म भूमि योग भूमि चरित्र भूमि up। स्वच्छ

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जय विदेशी, जय भारतवंश है तो दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे, इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो है, हिम्मत समय हुई है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान होना पांडव है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Coffee every

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा हर बच्चे का जमा का खाता चेक करते हैं। आप सभी भी
0: रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो भी निमित्त बने हुए हैं उन्हों को आजकल के वायुमंडल पर स्वयं तो संतुष्ट रहना ही है, लेकिन संतुष्ट करना भी है। असंतुष्टता का वायुमंडल में प्रभाव नहीं। आजकल संतुष्टता सबको चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं है, इसलिए बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसा परवस होके कर लेते हैं। कुछ सिक्या, कुछ किमिया, कुछ रैम, कुछ आत्मक सने उसकी आवश्यकता है। और देखा जाता है वायुमंडल में मेजॉरिटी को बैलेंस रखना नहीं आता, बैलेंस से सिक्या भी हो और फिर साथ साथ उनको हिम्मत भी दे। सिर्फ सिक्या से अभी सभी सिक्यक बन गए हैं, इसलिए सिक्या के साथ हिम्मत और सने दिल का बाहर का नहीं, लेकिन दिल का सने दोनों का बैलेंस रख करके दिन और ऐसे प्लान बनाओ ऐसा प्लान चलता रहे, जैसे समय पर समय पटिया चलाते हैं ना,

0: आपस में मिलके कोई ना कोई हर मास के लिए ऐसा वर्क निकालो जो सभी बिजी हो जाए उसमें, रिजल्ट आती रहे। और चीकिंग भी हो, अगर नहीं करते हैं तो क्यों? अलबेलापन है तो उनके ऊपर सने से सहयोग देना पड़ेगा, क्योंकि समय तीव्रता से समय पारा तो ऐसा कोई प्लान बनो, कोई ना कोई वर्क इंटरेस्ट का निकाल के सबको बिजी रखो उसमें। ठीक है।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सबकी दादी निमित बने ना, कोई कहे ना कहे, लेकिन निमित पालना के ऑटोमेटिक याद निकलती। तो जैसे दादी ने बाप दादा की तो बात शुरू, लेकिन दादी तो आप जैसे ही थी, लेकिन करके दिखे। सबसे बड़ा पेपर दादी ने अव्यक्त बाप होने की टाइम दिया। ऐसे वायुमंडल अचानक और इतने हिम्मत रख और सभी को मददगार बनाना, ये तो कमाल की। भले साथ दिया लेकिन निमित्त तो बने। दादी की विशेषता क्या रही? दिल साफ, मुराद हासिल, किसी की भी बात दिल में नहीं और अलबेलापन देखते भी उसको उमंग दिलाया। अलबेलाया छोड़ दो नहीं, हिम्मत दिलाई। वो सभी के दिल से निकलता है मेरी दादी।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yes.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अपने आप को पाप की मोबाइल और जो बाप दादा चाहते हैं कि संस्कार के सब्जेक्ट में नंबर वन जाओ। जो संस्कार चाहते हो वही कार्य में लगे। अटेंशन में आए ना तो हो जाए, लेकिन अटेंशन देना ऐसे नहीं हो जाएगा, लेकिन अटेंशन देना पड़ेगा।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Peace.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आए ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा नहीं। Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: संगठन सभी जगह मजबूत करो, चाहे दो है चाहे चार है चाहे बारह है, लेकिन तो काफी संगठन ऐसा मजबूत हो जो दोनों एक मत हो। स्वभाव एक दो में श्रेष्ठ बनाए मिलाने की कोशिश कर, जैसे दादी को याद करते हैं ना, क्यों याद करते हो, उसकी विशेषता सबको अपनापन दिया है ना, ऐसे सभी को अपनापन दिया ना, तो क्यों आप सभी नहीं कर सकते हो। जैसे सभी ने अनुभव किया हमारी दादी है, ऐसे नहीं मधुबन की दादी है, हमारी है। ऐसे सभी प्रमाण एक दो में अपनापन अनुभव कर, को याद करना, इसी को याद कहा जाता है समान बनना, विशेषता धारण करना, इसको कहते हैं याद। ठीक है ना, हर एक यही सोचो सब अपने महसूस, ऐसे नहीं ये तो पता नहीं कौन है क्या है, एक परिवार है ना, दादी भी सभी सेंटर पर तो नहीं रहती थी ना, एक ही स्थान पर रहती थी मधुबन में, लेकिन सभी को अपनापन दिया। तो आप सभी भी अपने अपने स्थान पर रहते फिर भी अपनापन दे सकते, ये दिल की स्थिति।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: दूसरे को नहीं देखना, बाप दादा को देखना, अपने बड़ी दादी को देखना, कितने न्यारी और प्यारी।

सारे लाइफ में हाथ का मेरा पन, हाथ का मैं पन से न्यारी। रही है उसकी रिजल्ट, बीमारी कितनी भी है निशानी देख रहे। तो जब ब्रह्मा बाप की तो बात कहते हैं, तो कहते हैं उसमें तो बाप था ना, लेकिन दादी तो आपके साथ प्रभु में रही, सेवा में साथी रही। तो जब एक बन सकता है निस्वार्थ स्थिति में, तो क्या आप सभी नहीं बन सकते?

0: Esse o Maxi, o Tsasi, Ortegelo, Papko Apmeniste, do Apmi, Apanemi, Sada.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने पहले खजाने के 3 खाते जमा करो, ये पहले बताए तो रिजल्ट कर रही है। एक है अपने पुरुषार्थ से जमा का खाता भराना, दूसरा है सदा संतुष्ट रहे और दूसरे को भी संतुष्ट करे। भिन्न-भिन्न संस्कार को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना। और Yes.

frío. Yeah.

Freddy. A baby. मास्टर सर्वशक्तिवान कमजोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है, मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान के ऊपर

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

आज के सारे दिन में।

Oh, shit.

आज छोड़ना भी है और कुछ नया कौन धारण करना है सोचो।

Joker.

couchait.

సంకల్పద్వారా. చూడండి.

Chuchur.

say it. Bob got this.

उस के लिए बाप दादा फिश

Cuerpo.

Psst.

3

संकल्प आज का अगर किया तो आज का दृढ़ संकल्प करने में आप हर एक को एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। So

0: मदद मिले।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
1: हाथ उठाने में तो हुशियार नहीं, बाप दादा खुश हिम्मत तो रखी ना, तो हिम्मत है बच्चे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी आप सभी भी अपना चित्र खींचो, आते हैं चित्र खींचने आते हैं ना, श्रेष्ठ संत

सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल, घर में इंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी, ड्रिल करने के लिए रेडी है, कांधे लाओ। सबसे

संकल्प किनारे कर देखो, आप सभी

machine. Dr. Henry.

रचना इस फिरके के चर में

See.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कोई भी बात तो समा देना अंदर मन में, बाप दादा को देख करके समा देना। एक शांत शक्ति, दूसरी समाने की शक्ति, अगर ये दोनों विशेष आप में है तो पास फिट

0: शक्ति को भी और समाने की शक्ति को भी, ऐसे नहीं समाना जो बीमार हो जाओ, ऐसे नहीं, कहीं अंदर समाने की कोशिश करती है ना तो बीमार हो जाती है, दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे नहीं समाना, समाने की शक्ति से समान।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अपने भाई बहनों के ऊपर रहम दिल बनो और रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको रहम है उस आत्मा के प्रति तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं है। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम, मतलब का रहम भी होता अंदर लगा हुआ किसी आत्मा के प्रति और समझते हैं रहम पर हुआ मतलब करें सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देवभान नहीं, आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है। ते अपमान वादी के किसी भी आकर्षण का नाम निशान नहीं। कोई होता है और कोई का लगाव गुरों से भी होता है, विशिष्टता से भी होता है। लेकिन विशिष्टता देने वाला कौन? आत्मा तो फिर भी कितने भी बड़ी हो लेकिन लेवता है बाप से। बाप से लिया है, अपना नहीं है, बाप ने दिया है तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो।

Okay.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा आपका साथी है, जहाँ भी मुश्किल आवे बस दिल से कहना बाबा मेरा, बाबा मेरा साथी, आ जाओ मदद कर। बाबा भी बंदा हुआ, सिर्फ दिल से कहना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Son.

से एक ही संकल्प में एकाग्र होके बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो, एक ही संकल्प।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर आपके दिल में छोटी छोटी बातें बड़ी नहीं होती है, होती छोटी है, लेकिन छोटी छोटी बातें इकट्ठी होके दिल तो भर जाती है ना, उनसे खाली तो नहीं रहती ना। तो दिल खाली नहीं तो दिल आराम कहाँ बैठेगा, कहाँ बैठने की जगह तो कि नहीं। इसीलिए बाप दादा उस नजर से आपको नहीं देखेगा, लेकिन सच्ची दिल और दूसरा का था सदा बुद्धि की लाइन के लिए लाइन में डिस्टर्ब नहीं हूं, कट ऑफ नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: नेचुरल अभ्यास हो जाए।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Light robot, ne ke karan, mind.

0: outside.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा यही इशारा देते हैं, कोई भी समस्या को सामना करने के लिए सहज विधि है। पहले एकाग्रता की शक्ति, मन एकाग्र हो जाए। एकाग्रता की शक्ति डरने बहुत अच्छा करती, इसलिए देखो कोर्ट में भी तराजू निशानी तराजू इसलिए दिखाती है, एकाग्र कांटा हो जाता तो कोई भी समस्या को जिस समय चारों और हट चलो उस समय अगर मन की एकाग्रता की शक्ति जहां वहां एकाग्र हो जाए, डरने हो जाए किस परिस्थिति में कौन सी शक्ति कार्य में लाए। एकाग्रता की शक्ति दृढ़ता सुनाई दिलाती और दृढ़ता सफलता की चाबी। ऐसे अपने को एक एग्जाम्पल बना के औरों को प्रेरणा देते रहो, ठीक है ना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: पवित्र आत्मा को तीन विशेष वरदान मिलते हैं, एक स्वयं को वरदान, सहज पाप का प्यारा बन जाता, वरदाता पाप के नियरेस्ट और डियरेस्ट बच्चा बन जाता। इसलिए निमित्त बने हुए हैं, और द्वारा भी दुआएं मिलती रहती। तीनों की दुआओं से
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो, बाप दादा खुश हो जाता। कमाल है हाथ उठाने की, खुश करना तो आता है बच्चों को। क्योंकि बाप दादा देखते हैं, सोचो जो आप कोटो में कोई में कोई निमित्त बने हो, अभी इन बच्चों के सिवाय और कौन करेगा? आपको ही तो करना है ना। तो बाप कोई पे कोई।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा का बॉम्बे और दिल्ली दोनों तरफ एक बात का ऐसा सर्विस तो करते हो, वो तो कहने की बात नहीं है, अच्छी कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन बाप दादा दिल्ली और बॉम्बे से यही चाहते ऐसे कोई ग्रुप निकालो, क्योंकि लिस्ट सभी वर्गों ने मेजॉरिटी बाप दादा को भेजी थी। देखी है वो लिस्ट, अच्छे अच्छे है लिस्ट में, जो नाम पाला कर सकते।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा, योग शक्तिशाली नहीं लगता, धारणाएं थोड़ी कम होती है। भाषण करने की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन दुआ दो और दुआ लो, एक ही बात करो और सब छोड़ो। एक बात करो, सुन रही है कि ये वायदा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: औरों की सेवा की बहुत बहुत बहुत बहुत आवश्यकता है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत नासिक समय आना है। ऐसे
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा सिर्फ एक शब्द चाहते, एक शब्द है, सफल करो, सफल बनो, जो भी खजाने
0: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: कभी भी कोई माया का संकल्प पिया वे तो मन के विमान से शांतिवन में पहुंचना। मन का विमान तो है ना, है ना? सभी के पास मन का विमान है। बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिए। इस विमान में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टार्ट करना है तो मेरा बाबा बस चलाना आते है ना विमान। जब भी कुछ हो मधुबन में पहुंच जाओ। भक्ति मार्ग में चार धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं। और मधुबन में भी चार धाम है तो चार धाम किए। पांडव भवन में देखो चार धाम है। जो भी आते हो पांडव भवन तो जाते हो ना। एक शांति स्तंभ और चौथा हिस्ट्री हाल। तो आप सभी ने चार धाम किए तो मान भाग्यवान तो हो ही गए। अभी किसी भी धाम को याद कर लेना। कब होता सो जाओ तो झुपड़ी में रोहरियान करने आ जाना। बहुत तेज हो, बहुत फास्ट हो तो स्त्री हाल में पहुंचना।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: See you.

एक सेकंड, बीच बीच में निकाल, अभ्यास करो, साइलेंस का संकल्प किया।

इसके लिए समय की आवश्यकता नहीं। एक सेकंड का अभ्यास करो।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Stop it.

stop.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी बच्चों को

てってやれ。かっこいいプレステって言え。かっこいいプレステって言え。エッセイ。チャロンオルカ。

सकते हो। ऐसी प्रैक्टिस स्वयं में अनुभव करते हो, या समझो जिस समय आपको कारने अकारने किसी बात के प्रति व्यर्थ संकल्प का तूफान आ गया है, ऐसे समय पर आप अपने मनबुद्धि को एकाग्र कर सकते हो। ये एकाग्रता की शक्ति की ट्रल समय पर करके देखिए। अगर ऐसे समय पर एक सेकंड में एकाग्रता की शक्ति कार्य में नहीं आती तो आगे चलकर ऐसी परिस्थिति बार बार आएंगे। तो आज बाप दादा सेकंड में फुल स्टॉप अर्थात एकाग्र स्थिति का अभ्यास पर अटेंशन खिंचवाना चाहिए। Second.

मास्टर सर्व शक्तिवान स्थिति में हूं। इस मास्टर शक्तिवान

0: समय हलचल का अभी तैयारी कर रहा है। इसलिए माइंड कंट्रोल मेरा मन है, मैं मन नहीं, मेरा मन है। तो मेरे के ऊपर मैं का कंट्रोल है। ये ड्रिल बहुत आवश्यक।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: Bobby. Fallo per mamma. Capibi. Cucciove. Coi. Questiano.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आवश्यक है तो शांति

0: agatato, Mauco. Abe. Double seva jai. Vani ki seva. To bab dada ne deka. Ki charo aur. Tom tam se. चल रही है अपना ओलेना भी निकाल रही हूं लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: थोड़ा सा

He said.

Meredith.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: समय अनुसार बाप दादा समय की वार्निंग तो दे रहे हैं, तो जैसे बच्चों से क्रोध की समझते हैं।

0: ये पर्तकीय परमान है, इससे सभी आकर्षित होके सुते आएंगे।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: So

again.

0: afanicarme entre hojitas malas. Arrachalaya.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: एक बाप दादा को अल्लाह पेलापन नहीं अच्छा लगता, और दूसरा दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा। कुछ भी हो जाए दिल बड़ी रखो, दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, और दिल खुश बड़ी दिल होती है। दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना, उमंग गुस्सा में सदा।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आजकल की मूल्यां

0: टेंशन बढ़ा है, इसलिए अटेंशन बढ़ा है तो टेंशन संस्कारों का कम होता जाएगा। बाप दादा ने पहले भी कहा, जब भी टेंशन आवे ना ए लगा दो, बस ऐड कर दो ए अटेंशन। चलना तो सबको आई, ये तो वायदा है ही पक्का, साथ चलेंगे साथ राज करेंगे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा सदाफ कहती है, कितने भी बड़े हो, उनके पास पावर है, आपके पास परमात्मा फिल पावर है।

क्या ऐसा

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जितना प्यार है ना उतना साथ में, प्यार भी चाहिए शक्ति भी चाहिए। अभी शक्ति को बढ़ो, वायुमंडल बनाओ। एक दो किस सहयोगी बन, हर एक अपने अपने स्थान पर रहते हैं। स्थान को शक्तिशाली बनाओ, साथियों को शक्तिशाली बनाओ। तो क्या करेंगे अभी? नवीनता करेंगे ना। जब मेरा बाबा कहते हैं तो मेरे जैसा बनना तो पड़ेगा ना। हर एक अपने दिल में दृढ़ संकल्प करो। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, अमृत वेले बाप दादा देखते हैं कि संकल्प अच्छे करते हो। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जब कर्म योगी बनते हो संबंध संपर्क में आते हो उसमें फर्क हो जाता। कर्म योगी की स्थिति उसमें अटेंशन ज्यादा चाहिए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

बच्चों को याद करती है, ऐसे नहीं है। कि बच्चे भूल गए हैं, नहीं, एक एक बच्चा

спасибо.

Lanika. Queen Nayanaya. Oh no.

0: लेकिन अभी ऐसा समय आने वाला है जो इंद्रों को याद करेंगे। इसलिए आप अपना कार्य करते रहो, वो बेचारे आप लोग तो भाग्यवान है, अपना भाग्य प्राप्त हुआ उसको अनुभव कर रहे और बाप दादा भी खुश है। कि अव्यक्त होते हुए भी बच्चों ने पहचाना और सेवा का भाग्य भी ले।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, मिनट करो, पांच मिनट की भी छुट्टी, पांच तक भी छुट्टी, लेकिन अगर कोई भी समय दस मिनट हो तो अच्छा। ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेंगी। इसीलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार। ठीक है, मुश्किल लगता है ना, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई अर्जा नहीं है। और बाप को सुनाया ये बहुत अच्छा की, क्योंकि मानो दस मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो पांच मिनट भी गए। इसीलिए बाप दादा की कम से कम पांच मिनट से कम नहीं करना, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ा। ठीक है, स्पष्ट हुआ? हुआ सब?

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

Asyut po dyan.

Wonderkelly.

Papa.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सर्व ज्ञान से जाना, लेकिन दिल के प्यार का अनुभव नहीं किया, प्यार से पाप को याद नहीं किया, तो प्रैक्टिकल फल नहीं निकलता, अर्थात अनुभव नहीं होता। अनुभवी स्वरूप है फल, लेकिन पानी नहीं देते तो सूखा करना हो जाता। भले कोर्स कराओ, भाषण करके आओ और इनाम भी लेके आओ, दिन में चार चार भाषण करो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं। क्योंकि पाप से दिल का स्नेह की निशानी है। हर ब्राह्मण परिवार से भी स्नेह, क्योंकि पाप समान है ना, तो पाप का लास्ट बच्चे से भी दिल का प्यार हर एक को सने के फिरती से देख। सिर्फ ज्ञानी नहीं बनो, भाषण वाले नहीं, बस नया स्वरूप बनो। अपने आप से पूछो, पाप से दिल का स्नेह जिस समय आवश्यकता है उस समय का स्नेह वो हो गए ज्ञानी भगत। तो इस क्या करेंगे, सने का वायुमंडल एक एक को देख के, चाहे कमजोर है लेकिन पुरुषार्थी तो है ना, परिवार का तो है ना। गिरे हुए को गिराओ नहीं, ओमा को उत्साह बढ़ाओ।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: समझते देखा बाप ने, समझ बहुत अच्छी। लेकिन समझ के साथ अपनी चेकिंग भी अच्छी करते हैं। लेकिन चलते चलते कोई बातें ऐसे आती है जो तीव्र पुरुषार्थ को साधारण पुरुषार्थ में

ऐसे बाप दादा ने देखा है कि कई बच्चे लक्ष्य

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

जुदा ना थे न जुदा रहेंगे, विदा ना होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो, जैसे

सामने जाते रहे तो देखने आती थी या फरिश्ता रोपन होता था। गरम करते भी बातचीत करते भी डायरेक्शन देते भी रूप देख।

Yeah.

0: बन गया।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सबे बहुत बहुत बहुत खुश है, खुश है, बहुत खुश है। कितना बहुत, तो सदा ऐसे रहना।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप लोग ये नहीं सोचना कि हम लोग एक काम क्यों करें, ये तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। जहाँ भी जाते हो वहाँ सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना। लौकिक कार्य कब तक करेंगे ये नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य के निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो, लौकिक पन नहीं हो। अलौकिक पन है तो लौकिक कार्य में भी समर्पण। लौकिक कार्य छोड़ के समर्पण समारोह मनाना है ये बात नहीं। नहीं तो फिर थी कैसे होगी। इसीलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो तो ऐसी आत्माओं को जो निमित्त लौकिक समझती है और रहती अलौकिकता में है, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक। समझा। इसीलिए ये नहीं कहना दादी हम कुछ रहो नहीं कहूँ। और ये डबल प्रारब्ध बना रहे आवश्यकता अगर समझेंगे तो आप बीच रहेंगे। आपको क्या जिम्मेवार दिया है, आप अपने लौकिकता में अलौकिकता लाओ। थको नहीं, थक जाती है। लौकिक काम करके थक के आती है, क्या करे नहीं। खुशी खुशी में दोनों निभाओ, क्योंकि देखा गया है कि डबल विदेशी आत्माओं में कार्य दोनों तरफ करने की शक्ति है। तो अपनी शक्ति को कार्य में लगाओ। कब छोड़ेंगे, क्या होगा, ये पाप और दादी या जो निमित्त है ना उनके ऊपर छोड़ दो, आप नहीं सोचो। कौन कौन है जो लौकिक कार्य भी करते और सेंटर भी संभालते, वाद रम लौकिक कार्य भी करते हैं और सेवा के केंद्र भी संभालते। हाँ उठाओ हाथ। अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा। नंबर आप लोगों को वैसे ही मिलेंगे, जो सारा धन सेवा करते हैं उन्हों जितना ही मिलेगा। सिर्फ ट्रस्टी होगी करना, मैं बन में नहीं आना, मैं इतना काम करती हूँ, मैं बन नहीं करा बना हार करा रहे। इंस्ट्रूमेंट पावर के आधार पर चल रहे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आज बाप दादा चारों के लकी और लवली बच्चों को देख रहे हैं। Yes.

Snake.

Chappie.

Casar no quiere a te caribar.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उनको ये लक्षण दिखाई से परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप की कौन थे, कौन है वो बच्चों दिखाई दे अनुभव करें।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

अपने पन का एहसास, अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा बस तेरा साथ।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: धरनी पर बैठ

0: pasar, Loki. Fällt wir. Du Chahilte. Fällt wir. Why be to hey? Du Chahilte. Fällt dir.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बच्चों को

fishes.

सब पूछते हैं ना, नए वर्ष में क्या होगा? तो बाप दादा का विशेष

इस वर्ष में संतुष्टता की शक्ति विशेष कार्य में लगा check.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा हर एक बच्चे को नंबर

Our final paper अचानक होना है, डेट फिक्स नहीं होनी, तो कोई भी अपन

0: इसमें पेपर सामान अनुसार होते, इसलिए सदा टेंशन से बहुत अटेंशन देते भी है उनको तो बाप दादा दीवार पुरुषार्थियों की लिस्ट में रखते, अटेंशन देते हैं लेकिन कुछ समय दीवार कुछ समय बीच में फिर पेपर आते, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
2: जुदा न थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे, धरती गगन हो मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: मेहनत से चुरा देता है, जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती है। सर नहीं, सदा सहज बाप दादा का हाथ अपने ऊपर अनुभव कराता है। सर नहीं, समाते हैं।

भी कहेंगे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और अभी बाहर निकलते और बातों में लग जाते बस अब थोड़ी सी है। जैसे कोई डुबकी लगा के निकल आता है ना, ऐसे सने में समाया डुबकी लगाई निकल। समाते रहो सने की शक्ति सबसे सहज मुक्त कर देंगे सभी बच्चों को। ब्रह्मन जन्म के आदि का अनुभव ने ब्रह्मन बनाया। सने ने परिवर्तन किया अपने जन्म के आद का समय। अनुभव याद है ना, ज्ञान और योग तो मिला लेकिन सने नहीं।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जैसे बाप दादा ने पहले कहा है कि कैसे भी करके मुझे अपने साथ परम धाम में ले जाना है, चाहे मार से चाहे प्यार से ले जाना अज्ञानियों को मार से और आप बच्चों को प्यार से। ऐसे ही बाप दादा भी कहते हैं अभी भी, कैसे भी करके दुनिया के आगे महान
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

exercise करो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा एक एक बच्चे के मस्तक में संपूर्ण पवित्रता की चमकती हुई मणि देखने जैसे नैनों में पवित्रता की झलक
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: समय पर विजय प्राप्त करने के लिए मन में बुद्धि में कैचिंग पावर और टचिंग ऐसे सरकमस्टांस आने हैं जो का दूर भी बैठे हो सकेंगे, टच होगा, ये करना है ये नहीं करना है, इसीलिए बाप दादा ने पहले भी सुनाया है। वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति अपने पास जितनी हो सके

叫，杰西叫，菲西，曼尔波蒂哥 ，control 卡斯哥。जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां हाथ है, जहां चाहो जब तक चाहो तब तक आर्डर से चला सकते हो। ऐसे ऐसे नहीं, योग के समय अनुभव होता है लेकिन कर्म के समय, व्यवहार के समय, संबंध के समय अच्छा।

0: took a final result. Ki pehle bhi beech beech mein paper liye jaate. To is विशेषता क्या करेंगे, साइलेंस की शक्ति जितना जमा कर सको एक सेकंड में, स्वीट साइलेंस के अनुभूति में खो जाओ, क्योंकि साइंस और साइलेंस साइंस भी अति में जा रही है. साइंस पर साइलेंस की शक्ति की विजय परिवर्तन करेंगे.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद.

जा मेहनत वा मोहब्बत।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: Yeah, buddy.

الشجره. It's

जैसे अनुभव है। मेरा शरीर fit

0: kode kesane iki. Tataku. Mira panalia. Esi kawal karne wale bache ho na.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कौन सी विशेष कमी है जिसके कारण आती माला भी रुकी हुई? ब्रह्मा बाप ने कहा, चारों ओर के बच्चे हर एरिया एरिया के मर्ज कर दी गई, जैसे आपके सोन है ना, तो ऐसे एक एक सोन नहीं, सोन तो बहुत बड़ी बड़ी है ना, एक एक विशेष देश इमर्ज कर दी गई और सबकी चेहरे देखते गए। देखते देखते ब्रह्मा बाप ने

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने शुरू शुरू में ट्रांस द्वारा बहुत नजारे दिखाए थे कि अंतम समय है, जब कोई हलचल होगी, सब वृत्तियां बाहर आएगी, तो सहारा देने की वृत्तियां भी। तो बाप दादा ने शुरू शुरू में बच्चों को दिखाया था तो कई बुरी दृष्टि वाले पीछे आते हैं, लेकिन उनों को लाइट ही दिखाई देती है, मनुष्य दिखाई नहीं देता, लाइट दिखाई देती, फरिश्ता रूप दिखाई देता। ऐसे आपका एकाग्रता का अभ्यास होते हुए भी आप ऐसे सामने बैठे हो, लेकिन उनको दिखाई नहीं देगा, लाइट लाइट ही दिखाई देंगे। ऐसे हो

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार आत्माओं के प्रति रहम दिल बनो। आजकल
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सिक्कियां बहुत नहीं दो कि मैं करूं, सिक्कियां देने में एक दो को भी समोचा रहे, लेकिन कि मैं के साथ सिक्कियां दो। मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो वो भले सिक्का दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो किमिया के साथ सिक्का दो। सिर्फ सिक्का नहीं दो, रहम दिल बन के सिक्का दो, तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे का कमजोरी की किमिया हो जाएगी। समझा?
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

Rutsche da. Free.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सफलता, सफलता

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

बातें नहीं सोचो, ये कैसे होगा, ये क्या होगा।

0: चेन्नई रंग।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप की मदद तो है लेकिन समय पड़ने में।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: I'm sick.

见你。

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

Sheep.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: उससे ज्यादा

Jessica.

सहयोग मिलता है।

0: समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी बहुत टाइम हो गया है, कोई नया कार्य की इन्वेंशन नहीं निकाली।

0: बहुत समय चल चुके ये प्रोग्राम्स, अभी कोई नई इन्वेंशन तैयार करो, कोई भी करे, छोटे करे तो इन्हें एडवांस मुबारक।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

siete però, man, what is unscrew?

0: इसको हल्का नहीं करना, क्योंकि समय पर यही अंत सवाली करें।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा ने आज अमृत वेले चक्कर लगाए, सभी

सबसे बड़े थे बड़ी।

见呐，就是如此斯莫蒂拉蒂，我是斯莫蒂拉蒂。

0: इसकी और आवश्यकता क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं किसी स्वरूप के अनुभूति में खोजे अनुभव अपने पुरुषार्थ में भी बहुत मदद करते हैं। तो बाप दादा ने देखा अनुभव की अथॉरिटी इस अनुभव के अथॉरिटी का अभ्यास के ऊपर और अटेंशन दो अनुभव स्वरूप स्थिति सदा समय हुई रहती है उसकी शिकिल चलन सेवा कर
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आपस में राय सलाह जल्दी करो, समय लग जाते हैं ना, तो उमंग भी थोड़ा कम हो जाता है।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जब भी माया कोई विकराल रूप में भी आवे, क्योंकि हल्के हल्के रूपों को तो आप भी जान गए हो, और माया भी सोचती है कि ये जान गए, लेकिन कोई का खेल होता है ना, देखा है क्या? देखा है यहाँ बच्चे करके दिखाते हैं, तो सब समझो कि ये का खेल रही है। अच्छी तरह से मारो, घबराओ नहीं, खेल है तो साखी होगा, खेल करने में मजा आता है। और माया आ गई तो घबरा जाते हैं, कुछ भी ताकत अभी माया में नहीं है, सिर्फ आपके स्वप्न में भी नहीं।

mucho por ti. Lekin koi bhi paristhiti aati hai, us paristhiti ko apna thode samay ke liye शिक्षक समझो, तो परिस्थिति आपको विशेष दो शक्तियां के अनुभवी बना शक्ति न्यारपन नष्ट हुआ और दूसरा सामना करने की शक्ति का पाठ पढ़ाती है के आगे के लिए आप सीख लो। तो ये परिस्थिति, ये तो पाठ पढ़ाने आई है। घबराते हो ना,

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आनंद
1: सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हाथ इसीलिए उठाते हैं, अभी जैसे एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है ना। कोई समस्या आई तो सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हासिल हो जाएगा, समस्या खत्म। समस्या सामने से हट जाएगी और बाप दादा सामने हाजिर हो जाए। मास्टर सर्वशक्तिवान अपना टाइटल हर समय याद करो, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सर्वशक्तिवान और कर्तव्य विश्व कल्याणकारी। तो सदा अपना टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाएंगी। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो, आर्डर करो, हर शक्ति को समय पर आर्डर करो। वैसे शक्तियां धारण करते भी हो है भी, लेकिन सब कमी ये हो जाती है कि समय पर यूज नहीं। समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते तो बहुत अच्छा होता। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई हुई है उसको समय पर यूज करो। जैसे इस कर्म इंद्रियों को आर्डर से चलाते हो ना, हाथ को पांव को चलाते हो ना, ऐसे हर शक्ति को आर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। आके रखते हो कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अभी सेकंड में सभी मैं परम धाम निवासी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने सुनाया था कि चाय दादी के लिए कहेगी ऐसे कि पेशेंट से पूछेंगे, कहेंगे कुछ नहीं है, तो ये पेशेंट नहीं है। पेशेंट स्वरूप दिखा रही, बीमारी भी है लेकिन न्यारी और प्यारी मन चल रही है वो अपने मस्ती में। ये प्यूरिफाई शरीर से अपना लास्ट स्टेज और भविष्य अष्ट देवता प्रसिद्ध होना और भक्ति में है इष्ट देव बनना। तीनों ही संस्कार नहीं

0: 喂。
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी सबकी बातें कहाँ।

0: किसको कहा जाता है? जैसा समय जैसा सरकमस्टेंस वैसे स्वरूप बने, ये तो साधारण लोगों का भी होता है, लेकिन फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने या साधारण
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अभी सेवा और स्व दोनों का बैलेंस ऐसा सेवा स्थान बनाओ जो सबके आगे एक एग्जाम्पल हो। जैसे म्यूजियम होता है ना, तो सब एड्रेस देते हैं ना, शहर में कहाँ भी जाओ तो एड्रेस देते हैं, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। ऐसे जिसको शांति चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो मगुत्सा चाहिए, वो आपके एड्रेस में पहुँचे, फैल जावे। अगर शांति का वाइब्रेशन लेना हो तो यहाँ जाओ, अगर हिम्मत पढ़नी हो तो यहाँ जाओ। ऐसे स्पेशल बनाओ, ठीक है ना। बाकी तो सब म्यूजियम तो जाता, अध्यात्मक म्यूजियम भी है, भाषण भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई विशेषता ऐसी स्थान की बनाओ जो भ्रमणों में और पैर में भी ये प्रसिद्ध हो जाए कि ये चाहिए तो यहाँ जाओ। क्योंकि आजकल लोगों को सुनने की आदत तो है लेकिन अनुभव करने की आदत नहीं। तो अगर अनुभव करने जाए तो आपके पास ये प्रसिद्ध हो जाए कि अगर आपको अनुभव करना है तो ये एड्रेस।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बाप दादा को खुशी है कि हर बच्चा चाहे सिंधी है चाहे हिंदी है, लेकिन हर बच्चा खुश रहता है मेजॉरिटी, ये देख के बाबा बहुत खुश होते। खुशी कभी नहीं कमाना, बात होती है लेकिन बात हमारी खुशी क्यों ले जाए। खुशी हर एक की अपनी चीज है, वो कभी नहीं जानी चाहिए। बातें आती है, वो भी पेपर आता है। तो जो बच्चे अच्छे पुरुषार्थी है वो पेपर में सदा पास होते, उनके लिए पेपर कोई बड़ी बात नहीं है। ही रेडी
3: ठीक है तो।
2: ऐसे रेडी रहने वाले की निशानी ये है कि उनके शिकिल पर सदा खुशी की लहर दिखाई देती। कितनी भी बातें हो जाए, क्योंकि डबल संबंध में रहते हैं, लौकिक में भी है अलौकिक में भी, लेकिन जो सदा खुश रहते हैं वो आगे से आगे कदम बढ़ाता रहते। और बाप उन बच्चों को देख सुखम में